द्वे त्रीणि चत्वारि ओम कुक्कुटध्वजाय कुङ्कुमवर्णाय महामोहनाय वंशवृद्धिकराय

आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, हर तरफ शोर है, हम सबके मन में कोई ना कोई उलझन है। हर इंसान शांति खोज रहा है, उसे एक ऐसे सहारे की तलाश है जो इस शोर के बीच भी मन को शांत रख सके। और तब जब मन को किसी अपने की जरूरत होती है, एक नाम अपने हृदय से निकलता है, शिव। वही शिव जो केवल हमारे भगवान ही नहीं, हमारे सबसे अपने हैं। हमारी हर खुशी में शिव, हमारे हर दुख में शिव, हमारी हर सांस में शिव। तो चलिए कुछ पल के लिए अपने मन को उसी शिव में डुबा दें और अपनी इस छोटी सी भक्ति को उनके चरणों में अर्पित करें। प्रस्तुत है जय शंकर महाराज।

पाई रे भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी वृथा जन्म गवाया। रहाओ आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए जी जनते क्या विचारे, क्या को वाक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाणै, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजय, हमै तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निदान हर मन वसै, हमै दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सतबल हारै जाओ, अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइयां कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए सहज ही।

गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए मन रे, नाम जपो सुख होए। गुरपूरा सा लाही है सहज मिलै प्रभ सोए रहाओ, भरम गया पौ पा गया हर चरणी चित लाए। गुरमुख शब्द कमाई है हर वसै मन आए, कर महल सच समाई है जमकाल ना सकै खाए। नामा शीबा कबीर जो लाहा, पूरे गुरते गत पाई। ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है होमै जात गवाई। सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेटै भाई। दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै, दूजा पाओ न जाणै। सतगुर भेटै निर्मल होवा अंदन नाम वखाणै। एको पढ़ै एको ना बूझै, दूजा अवर ना जाणै। खड़ दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए। सतगुर सेवै तां गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी से उचित लागै आवन जान रहाए। पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै, बिन गुर परम भुलाए। लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए। जां नाउ चेतै तां गत पाए, जां सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जां सतगुर मिलै सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए। सतबलिहारी गुर अपने विटो, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता। प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर

सहज हिते सुख सांत होए बिन सहज जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए सबदे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड़ भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मन

आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार। सहजे अदिष्ट पछाणीए निरपौ ज्योत निरंकार। सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार। पूरे सबद सलाही है।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवै काज चित आवै ओस पार ब्रह्मो ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका कड़ी ना बैसन सोए चित आवै उस पर ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोग प्यार चारे किलवख उन अग किए होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर माते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अपार। रंग तमासे बहु विधि चाए लग रहया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

अनजोबन सोचे तो हर का नाम नाचे तही वन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम नाचे तै प्राणी बिकल भया संग माया धन सिउ रता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म सेती वापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक तीजै पहरे प्राणी धन जोबन सिउ चित चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रतन होवा दुआले खिन मैं पया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस्यो लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत

मित्रा, हरनामा हर ना संभालो, हरनामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई, एहो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चले आप पछताई।